0: आपकी वेबसाइट को इंटरनेट पे प्रमोट कीजिए, गूगल सर्च इंजिन पे टॉप 10 रैंकिंग में आइए। तो SEO मार्केटिंग, जिससे आप अपनी मसनूआत या फिर अपनी ऑर्गेनाइजेशन या इसके साथ अपनी कंपनी को बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं सोशल मीडिया पर, तो अभी कांटेक्ट कीजिए बिजवेब सॉल्यूशन। कॉल कीजिए 0315-220-6269 पर।
1: हैप्पी म्यूजिकल जर्नी ऑन द मैजिक रेडियो डॉट कॉम।
2: अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सुन रहे हैं ये प्रोग्राम नेटस होस्ट के तावुन से, netushost.com, www.netushost.com, NATUSHOST, netushost.com। नेटस होस्ट क्या है, ये कौन सी कंपनी है और ये अपनी क्या क्या सर्विसेज देती हैं? IT से मुतालिक इसकी सर्विसेज हैं। एक सर्विस है इसकी वेब होस्टिंग, जो कि आपकी वेबसाइट जो होती है, जो होस्ट होती है इंटरनेट पे, जो ऑनलाइन दिखती है, वो किसी न किसी जगह तो स्टोर होती है ना, उसकी फाइल्स कहीं ना कहीं तो सेव होती हैं, तो वो होस्टिंग सर्वर पे होती हैं। होस्टिंग सर्वर क्या होता है? हमारे पास होस्ट होता है, उसमें से हम आपको होस्टिंग सर्विस प्रोवाइड करते हैं। 2GB 5GB का पैकेज हमारे पास इनिशियल स्टार्टअप लेवल पर है। 2GB का पैकेज हम आपको दे रहे हैं 800 रुपए एक साल के लिए, और 5GB का हम आपको पैकेज दे रहे हैं 1000 रुपए में एक साल के लिए। डोमेन अगर आपने लेना है, डोमेन वो होता है आपकी वेबसाइट का नाम, जो ऑनलाइन लोग लिखते हैं www.xyz, जो कुछ भी आपकी वेबसाइट का नाम है, जैसे कि हमारा नाम है netushost.com, तो ये .com एक्सटेंशन कहलाता है। तो .com के डोमेन में .net का आपको एक्सटेंशन चाहिए, तो मजीद आपको सिर्फ 700 रुपए देने पड़ेंगे, यानी कि 1700 में आपको 5GB का पैकेज मिलेगा वेब होस्टिंग डोमेन के साथ। सालाना, महीना नहीं बल्कि सालाना आपने देना है, और आपकी वेबसाइट ऑनलाइन वर्ल्ड वाइड हो जाएगी इंटरनेट पे। रिलायबल होस्टिंग है, आपको कोई परेशानी नहीं होगी, सब कुछ हमारे तरफ से होगा, हम टेक्निकली तौर पे भी आपको सपोर्ट करेंगे, हैंडल करेंगे। तो netushost.com, NATUSHOST.com। आप हमारे नुमाइंदे से बात करना चाहें तो आप नंबर डायल कर सकते हैं, अभी नंबर डायल कीजिए। लिमिटेड टाइम के लिए ये ऑफर है हमारी आपके लिए, 1700 रुपए सालाना में आपको 5GB का प्लस डोमेन फ्री आपको हम ये सर्विस दे रहे हैं। नंबर हमारा डायल कीजिएगा 0315-220-6269, रिपीट इट 0315-220-6269। नेटस होस्ट के नुमाइंदे से आप अभी रابطہ करें, 24 घंटे में आपकी वेबसाइट ऑनलाइन हो जाएगी।

0: आपकी वेबसाइट को इंटरनेट पे प्रमोट कीजिए। गूगल सर्च इंजिन पे टॉप 10 रैंकिंग में आइए। तो SEO मार्केटिंग, जिससे आप अपनी मसनूआत या फिर अपनी ऑर्गेनाइजेशन या इसके साथ अपनी कंपनी को बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं सोशल मीडिया पर, तो अभी कांटेक्ट कीजिए बिजवेब सॉल्यूशन। कॉल कीजिए 0315-220-6269 पर। I'm about to strip and I wanna quick, can you handle? Soundtastic! Back to back, super hit on your station, themagicradio.com. We have a best listener.
1: Radio toh bada lash hai.

0: वेबसाइट बनवाएं, कारोबार बढ़ाएं, आपकी वेबसाइट आपके कारोबार की पहचान। इस वेब सॉल्यूशन अभी कॉल कीजिए 03152206269 पर।
1: द मैजिकल रेडियो www.themagicradio.com।

0: वेबसाइट बनवाएं, कारोबार बढ़ाएं, आपकी वेबसाइट आपके कारोबार की पहचान। इस वेब सॉल्यूशन अभी कॉल कीजिए 03152206269 पर।
1: हैप्पी म्यूजिकल जर्नी ऑन द मैजिक रेडियो .com।

0: की वेबसाइट को इंटरनेट पे प्रमोट कीजिए। गूगल सर्च इंजन पे टॉप 10 रैंकिंग में आइए। तो SEO मार्केटिंग, जिससे आप अपनी मसनूआत या फिर अपनी ऑर्गेनाइजेशन या इसके साथ अपनी कंपनी को बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं सोशल मीडिया पर, तो अभी कांटेक्ट कीजिए बिजवेब सॉल्यूशन। कॉल कीजिए 0315-220-6269 पर।
1: हैप्पी म्यूजिकल जर्नी ऑन द मैजिक रेडियो .com।

वेबसाइट बनवाएं, कारोबार बढ़ाएं, आपकी वेबसाइट आपके कारोबार की पहचान। इस वेब सॉल्यूशन अभी कॉल कीजिए 031522062 69 पर।

वेबसाइट बनवाएं, कारोबार बढ़ाएं, आपकी वेबसाइट आपके कारोबार की पहचान। इस वेब सॉल्यूशन अभी कॉल कीजिए 031522062 69 पर।

0: क्या आप अपनी वेबसाइट ऑनलाइन करवाने का सोच रहे हैं? सोच रहे हैं कि अपनी वेबसाइट लॉन्च की जाए, लेकिन किस तरह? नेटिस होस्ट दे रहा है आपको वेब होस्टिंग डोमेन सॉल्यूशन सिर्फ 1900 सालाना में। अभी कॉल कीजिए 0315-220-6269 पर, या फिर विजिट कीजिए www.netishost.com। योर होस्टिंग पार्टनर नेटिस होस्ट।
1: The Magical Radio, www.themagicradio.com।

0: अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सुन रहे हैं ये प्रोग्राम नेटस होस्ट के तावुन से, netushost.com, www.netushost.com, netushost.com। नेटस होस्ट क्या है, ये कौन सी कंपनी है और ये अपनी क्या क्या सर्विसेज देती हैं? आईटी से मुतालिक इसकी सर्विसेज हैं। एक सर्विस है इसकी वेब होस्टिंग, जो कि आपकी वेबसाइट जो होती है, जो होस्ट होती है इंटरनेट पे, जो ऑनलाइन दिखती है, वो किसी न किसी जगह तो स्टोर होती है ना, उसकी फाइल्स कहीं ना कहीं तो सेव होती हैं, तो वो होस्टिंग सर्वर पे होती हैं। होस्टिंग सर्वर क्या होता है? हमारे पास होस्ट होता है, उसमें से हम आपको होस्टिंग सर्विस प्रोवाइड करते हैं। 2GB 5GB का पैकेज हमारे पास इनिशियल स्टार्टअप लेवल पर है। 2GB का पैकेज हम आपको दे रहे हैं 800 रुपए एक साल के लिए, और 5GB का हम आपको पैकेज दे रहे हैं 1000 रुपए में एक साल के लिए। डोमेन अगर आपने लेना है, डोमेन वो होता है आपकी वेबसाइट का नाम, जो ऑनलाइन लोग लिखते हैं www.xyz, जो कुछ भी आपकी वेबसाइट का नाम है, जैसे कि हमारा नाम है netushost.com, तो ये .com एक्सटेंशन कहलाता है। .com के डोमेन में .net का आपको एक्सटेंशन चाहिए, तो मजीद आपको सिर्फ 700 रुपए देने पड़ेंगे, यानी कि 1700 में आपको 5GB का पैकेज मिलेगा वेब होस्टिंग डोमेन के साथ। सालाना, महीना नहीं बल्कि सालाना आपने देना है, और आपकी वेबसाइट ऑनलाइन वर्ल्ड वाइड हो जाएगी इंटरनेट पे। रिलायबल होस्टिंग है, आपको कोई परेशानी नहीं होगी, सब कुछ हमारे तरफ से होगा, हम टेक्निकली तौर पे भी आपको सपोर्ट करेंगे, हैंडल करेंगे। तो netushost.com, netushost.com। आप हमारे नुमाइंदे से बात करना चाहें तो आप नंबर डायल कर सकते हैं, अभी नंबर डायल कीजिए। लिमिटेड टाइम के लिए ये ऑफर है हमारी आपके लिए, 1700 रुपए सालाना में आपको 5GB का प्लस डोमेन फ्री आपको हम ये सर्विस दे रहे हैं। नंबर हमारा डायल कीजिएगा 03152206269, रिपीट इट 03152206269, 03152206269। नेटस होस्ट के नुमाइंदे से आप अभी राब्ता करें, 24 घंटे में आपकी वेबसाइट ऑनलाइन हो जाएगी।
1: वर्ल्ड वाइड वेब होस्टिंग, netushost.com is giving you a 5GB web hosting with free .com domain in just $17 only. 5GB hosting, $17 per year, not a monthly, it's just per year. For more detail, contact us 0315-21-2261 or email sales@netushost.com.

क्या आप अपनी वेबसाइट ऑनलाइन करवाने का सोच रहे हैं कि अपनी वेबसाइट लॉन्च की जाए, लेकिन किस तरह? नेटिस होस्ट दे रहा है आपको वेब होस्टिंग डोमेन सॉल्यूशन सिर्फ 1900 सालाना में। अभी कॉल कीजिए 0315-220-6269 पर या फिर विजिट कीजिए www.netishost.com। योर होस्टिंग पार्टनर नेटिस होस्ट।

0: क्या आप अपनी वेबसाइट ऑनलाइन करवाने का सोच रहे हैं कि अपनी वेबसाइट लॉन्च की जाए, लेकिन किस तरह? नेटिस होस्ट दे रहा है आपको वेब होस्टिंग डोमेन सॉल्यूशन सिर्फ 1900 सालाना में। अभी कॉल कीजिए 0315-220-6269 पर या फिर विजिट कीजिए www.netishost.com। योर हॉस्टिंग पार्टनर नेटिस होस्ट।
1: I'm about to strip and I wanna quit, can you handle? Soundtastic! Back to back, super hit on your station, themagicradio.com.
2: We have a best listener.
3: Radio to bada lash hai.

झूठा लगता है, कभी सच्चा लगता है। एहसास ख्यालों का कभी अच्छा लगता है। ए दिल तू मुझको बता, ऐसी क्या बात है, ऐसी

0: क्या आप अपनी वेबसाइट ऑनलाइन करवाने का सोच रहे हैं कि अपनी वेबसाइट लॉन्च की जाए, लेकिन किस तरह? नेटिस होस्ट दे रहा है आपको वेब होस्टिंग डोमेन सॉल्यूशन सिर्फ 1900 सालाना में। अभी कॉल कीजिए 0315-220-6269 पर या फिर विजिट कीजिए www.netishost.com। योर होस्टिंग पार्टनर नेटिस होस्ट।
1: Soundtastic! Back to back, super hit on your station, themagicradio.com.
2: We have a best listener.
3: Radio to bada lagsha.

0: वेबसाइट बनवाएं, कारोबार बढ़ाएं, आपकी वेबसाइट आपके कारोबार की पहचान। इस वेब सॉल्यूशन अभी कॉल कीजिए 03152206269 पर। I'm about to strip and I wanna quit, can you
1: handle? Soundtastic! Back to back, super hit on your station, themagicradio.com.
2: We have a best listener.
3: Radio to bada lash hai!

0: क्या आप अपनी वेबसाइट ऑनलाइन करवाने का सोच रहे हैं? सोच रहे हैं कि अपनी वेबसाइट लॉन्च की जाए, लेकिन किस तरह? नेटिस होस्ट दे रहा है आपको वेब होस्टिंग डोमेन सॉल्यूशन सिर्फ 1900 सालाना में। अभी कॉल कीजिए 0315-220-6269 पर या फिर विजिट कीजिए www.netishost.com। योर होस्टिंग पार्टनर नेटिस होस्ट।
1: Happy musical journey on themagicradio.com.

0: वेबसाइट बनवाएं, कारोबार बढ़ाएं, आपकी वेबसाइट आपके कारोबार की पहचान। इस वेब सॉल्यूशन अभी कॉल कीजिए 03152206269 पर।
1: हैप्पी म्यूजिकल जर्नी ऑन द मैजिक रेडियो .com।

0: बिज वेब सॉल्यूशन पेश कर रहा है अपनी मुनफरिद सर्विसेज, वेबसाइट डिजाइनिंग, ऑनलाइन मार्केटिंग, SEO सर्विसेज, ऑनलाइन स्ट्रीमिंग और एंड्रॉइड मोबाइल एप्लीकेशन। मज़ीद मालूमात के लिए विजिट कीजिए www.bizwebsolution.net या फिर हमें फेसबुक पर ज्वाइन कीजिए facebook.com/bizwebsolution।
1: द मैजिकल रेडियो www.themagicradio.com।

0: क्या आप अपनी वेबसाइट ऑनलाइन करवाने का सोच रहे हैं कि अपनी वेबसाइट लॉन्च की जाए, लेकिन किस तरह? नेटिस होस्ट दे रहा है आपको वेब होस्टिंग डोमेन सॉल्यूशन सिर्फ 1900 सालाना में। अभी कॉल कीजिए 03152206269 पर या फिर विजिट कीजिए www.netishost.com। योर होस्टिंग पार्टनर नेटिस होस्ट।
1: Happy musical journey on themagicradio.com.

0: वेबसाइट बनवाएं, कारोबार बढ़ाएं, आपकी वेबसाइट आपके कारोबार की पहचान। इस वेब सॉल्यूशन अभी कॉल कीजिए 03152206269 पर।
1: द मैजिकल रेडियो www.themagicradio.com।

0: अपनी वेबसाइट को इंटरनेट पे प्रमोट कीजिए। गूगल सर्च इंजिन पे टॉप 10 रैंकिंग में आइए। तो SEO मार्केटिंग, जिससे आप अपनी मसनूआत या फिर अपनी ऑर्गेनाइजेशन या इसके साथ अपनी कंपनी को बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं सोशल मीडिया पर, तो अभी कांटेक्ट कीजिए बिजवेब सॉल्यूशन। कॉल कीजिए 0315-220-6269 पर।
1: The Magical Radio, www.themagicradio.com।

0: अपनी वेबसाइट को इंटरनेट पे प्रमोट कीजिए। गूगल सर्च इंजिन पे टॉप 10 रैंकिंग में आइए। तो SEO मार्केटिंग, जिससे आप अपनी मसनूआत या फिर अपनी ऑर्गेनाइजेशन या इसके साथ अपनी कंपनी को बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं सोशल मीडिया पर, तो अभी कांटेक्ट कीजिए बिजवेब सॉल्यूशन। कॉल कीजिए 0315-220-6269 पर।
1: हैप्पी म्यूजिकल जर्नी ऑन द मैजिक रेडियो .com।
2: This song is brought to you by apnakohar.com।

0: की वेबसाइट को इंटरनेट पर प्रमोट कीजिए। गूगल सर्च इंजिन पे टॉप 10 रैंकिंग में आइए। तो SEO मार्केटिंग, जिससे आप अपनी मसनूआत या फिर अपनी ऑर्गेनाइजेशन या इसके साथ अपनी कंपनी को बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं सोशल मीडिया पर, तो अभी कांटेक्ट कीजिए बिजवेब सॉल्यूशन। कॉल कीजिए 0315-220-6269 पर।
1: हैप्पी म्यूजिकल जर्नी ऑन द मैजिक रेडियो .com।

0: अपनी वेबसाइट को इंटरनेट पे प्रमोट कीजिए, गूगल सर्च इंजिन पे टॉप 10 रैंकिंग में आइए, तो SEO मार्केटिंग जिससे आप अपनी मसनुआत या फिर अपनी ऑर्गेनाइजेशन या इसके साथ अपनी कंपनी को बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं सोशल मीडिया पर, तो अभी कांटेक्ट कीजिए बिजवेब सॉल्यूशन, कॉल कीजिए 0315-220-6269 पर।
1: हैप्पी म्यूजिकल जर्नी ऑन द मैजिक रेडियो .com।

0: वेबसाइट बनवाएं, कारोबार बढ़ाएं, आपकी वेबसाइट आपके कारोबार की पहचान। इस वेब सॉल्यूशन अभी कॉल कीजिए 03152206269 पर।
1: The Magical Radio, www.themagicradio.com।

0: क्या आप अपनी वेबसाइट ऑनलाइन करवाने का सोच रहे हैं कि अपनी वेबसाइट लॉन्च की जाए, लेकिन किस तरह? नेटिस होस्ट दे रहा है आपको वेब होस्टिंग डोमेन सॉल्यूशन सिर्फ 1900 सालाना में। अभी कॉल कीजिए 0315-220-6269 पर, या फिर विजिट कीजिए www.netishost.com। योर होस्टिंग पार्टनर नेटिस होस्ट।
1: Soundtastic, back to back, super hit on your station, themagicradio.com.
2: We have a best listener.
3: Radio to bada lagsha.

0: क्या आप अपनी वेबसाइट ऑनलाइन करवाने का सोच रहे हैं कि अपनी वेबसाइट लॉन्च की जाए, लेकिन किस तरह? नेटिस होस्ट दे रहा है आपको वेब होस्टिंग डोमेन सॉल्यूशन सिर्फ 1900 सालाना में। अभी कॉल कीजिए 0315-220-6269 पर, या फिर विजिट कीजिए www.netishost.com। योर होस्टिंग पार्टनर नेटिस होस्ट।
1: Happy musical journey on themagicradio.com।

0: आपकी वेबसाइट को इंटरनेट पे प्रमोट कीजिए, गूगल सर्च इंजन पे टॉप 10 रैंकिंग में आइए, तो SEO मार्केटिंग जिससे आप अपनी मसनूआत या फिर अपनी ऑर्गेनाइजेशन या इसके साथ अपनी कंपनी को बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं सोशल मीडिया पर, तो अभी कांटेक्ट कीजिए बिजवेब सॉल्यूशन, कॉल कीजिए 0315-220-6269 पर।
1: हैप्पी म्यूजिकल जर्नी ऑन द मैजिक रेडियो .com।

0: क्या आप अपनी वेबसाइट ऑनलाइन करवाने का सोच रहे हैं? सोच रहे हैं कि अपनी वेबसाइट लॉन्च की जाए, लेकिन किस तरह? नेटिस होस्ट दे रहा है आपको वेब होस्टिंग डोमेन सॉल्यूशन सिर्फ 1900 सालाना में। अभी कॉल कीजिए 0315-220-6269 पर या फिर विजिट कीजिए www.netishost.com। योर होस्टिंग पार्टनर नेटिस होस्ट।
1: The Magical Radio, www.themagicradio.com.

0: क्या आप अपनी वेबसाइट ऑनलाइन करवाने का सोच रहे हैं कि अपनी वेबसाइट लॉन्च की जाए, लेकिन किस तरह? नेटिस होस्ट दे रहा है आपको वेब होस्टिंग डोमेन सॉल्यूशन सिर्फ 1900 सालाना में। अभी कॉल कीजिए 0315-220-6269 पर या फिर विजिट कीजिए www.netishost.com। योर होस्टिंग पार्टनर नेटिस होस्ट।
1: I'm about to strip and I want a quick, can you handle? Soundtastic! Back to back, super hit on your station, themagicradio.com.
2: We have a best listener.
3: Radio to bada lash hai.

0: क्या आप अपनी वेबसाइट ऑनलाइन करवाने का सोच रहे हैं कि अपनी वेबसाइट लॉन्च की जाए, लेकिन किस तरह? NatisHost दे रहा है आपको वेब होस्टिंग डोमेन सॉल्यूशन सिर्फ 1900 सालाना में। अभी कॉल कीजिए 0315-220-6269 पर या फिर विजिट कीजिए www.natishost.com। योर होस्टिंग पार्टनर NatisHost।
1: The Magical Radio, www.themagicradio.com।

0: आपकी वेबसाइट को इंटरनेट पे प्रमोट कीजिए। गूगल सर्च इंजन पे टॉप 10 रैंकिंग में आइए। तो SEO मार्केटिंग, जिससे आप अपनी मसनूआत या फिर अपनी ऑर्गेनाइजेशन या इसके साथ अपनी कंपनी को बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं सोशल मीडिया पर, तो अभी कांटेक्ट कीजिए बिजवेब सॉल्यूशन। कॉल कीजिए 0315-220-6269 पर।
1: द मैजिकल रेडियो www.themagicradio.com।

0: क्या आप अपनी वेबसाइट ऑनलाइन करवाने का सोच रहे हैं कि अपनी वेबसाइट लॉन्च की जाए, लेकिन किस तरह? नेटेसोस दे रहा है आपको वेब होस्टिंग डोमेन सॉल्यूशन सिर्फ 1900 सालाना में। अभी कॉल कीजिए 0315-220-6269 पर या फिर विजिट कीजिए www.netishost.com। योर होस्टिंग पार्टनर नेटेसोस्ट।
1: Happy musical journey on themagicradio.com।

0: वेबसाइट बनवाएं, कारोबार बढ़ाएं, आपकी वेबसाइट आपके कारोबार की पहचान। इस वेब सॉल्यूशन अभी कॉल कीजिए 03152206269 पर।
1: हैप्पी म्यूजिकल जर्नी ऑन द मैजिक रेडियो .com।

0: बिज वेब सॉल्यूशन पेश कर रहा है अपनी मनफरिद सर्विसेज, वेबसाइट डिजाइनिंग, ऑनलाइन मार्केटिंग, SEO सर्विसेज, ऑनलाइन स्ट्रीमिंग और एंड्रॉइड मोबाइल एप्लीकेशन। मज़ीद मालूमात के लिए विजिट कीजिए www.bizwebsolution.net या फिर हमें फेसबुक पर ज्वाइन कीजिए facebook.com/bizwebsolution।
1: हैप्पी म्यूजिकल जर्नी ऑन द मैजिक रेडियो.com।

0: बिज वेब सॉल्यूशन पेश कर रहा है अपनी मुनफरिद सर्विसेज, वेबसाइट डिजाइनिंग, ऑनलाइन मार्केटिंग, SEO सर्विसेज, ऑनलाइन स्ट्रीमिंग और एंड्रॉइड मोबाइल एप्लीकेशन। मजीद मालूमात के लिए विजिट कीजिए www.bizwebsolution.net या फिर हमें फेसबुक पर ज्वाइन कीजिए facebook.com/bizwebsolution।
1: हैप्पी म्यूजिकल जर्नी ऑन द मैजिक रेडियो .com।

0: वेबसाइट बनवाएं, कारोबार बढ़ाएं, आपकी वेबसाइट आपके कारोबार की पहचान। इस वेब सॉल्यूशन अभी कॉल कीजिए 0315-220-6269 पर।
1: हैप्पी म्यूजिकल जर्नी ऑन द मैजिक रेडियो .com।

0: बिज वेब सॉल्यूशन पेश कर रहा है अपनी मनफरिद सर्विसेज, वेबसाइट डिजाइनिंग, ऑनलाइन मार्केटिंग, SEO सर्विसेज, ऑनलाइन स्ट्रीमिंग और एंड्रॉइड मोबाइल एप्लीकेशन। मजीद मालूमात के लिए विजिट कीजिए www.bizwebsolution.net या फिर हमें फेसबुक पर ज्वाइन कीजिए facebook.com/bizwebsolution।
1: Soundtastic, back to back, super hit on your station, themagicradio.com.
2: We have a best listener.
3: Radio to bada lagsha.

tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum. जिंदगी और मौत का सवाल बार बार मेरे जहन में गर्दिश करता है। क्या किस्मत की तमाम ठोकरें सिर्फ मेरे लिए ही बनाई गई हैं? क्या किस्मत के तमाम चक्रों की गर्दिश खत्म कर देना ही जौहर-ए-मर्दानी

BizWeb Solution पेश कर रहा है अपनी मनफरिद सर्विसेज, वेबसाइट डिजाइनिंग, ऑनलाइन मार्केटिंग, SEO सर्विसेज, ऑनलाइन स्ट्रीमिंग और एंड्रॉइड मोबाइल एप्लीकेशन। मजीद मालूमात के लिए विजिट कीजिए www.bizwebsolution.net या फिर हमें फेसबुक पर ज्वाइन कीजिए facebook.com/bizwebsolution।

0: वेबसाइट बनवाएं, कारोबार बढ़ाएं, आपकी वेबसाइट आपके कारोबार की पहचान। इस वेब सॉल्यूशन अभी कॉल कीजिए 03152206269 पर।
1: हैप्पी म्यूजिकल जर्नी ऑन द मैजिक रेडियो .com।

0: बिज वेब सॉल्यूशन पेश कर रहा है अपनी मनफरिद सर्विसेज, वेबसाइट डिजाइनिंग, ऑनलाइन मार्केटिंग, SEO सर्विसेज, ऑनलाइन स्ट्रीमिंग और एंड्रॉइड मोबाइल एप्लीकेशन। मजीद मालूमात के लिए विजिट कीजिए www.bizwebsolution.net या फिर हमें फेसबुक पर ज्वाइन कीजिए facebook.com/bizwebsolution।
1: हैप्पी म्यूजिकल जर्नी ऑन द मैजिक रेडियो .com।

0: क्या आप अपनी वेबसाइट ऑनलाइन करवाने का सोच रहे हैं कि अपनी वेबसाइट लॉन्च की जाए, लेकिन किस तरह? नेटिसहोस्ट दे रहा है आपको वेब होस्टिंग डोमेन सॉल्यूशन सिर्फ 1900 सालाना में। अभी कॉल कीजिए 03152206269 पर या फिर विजिट कीजिए www.netishost.com। योर होस्टिंग पार्टनर नेटिसहोस्ट।
1: Happy musical journey on themagicradio.com।

0: अपनी वेबसाइट को इंटरनेट पे प्रमोट कीजिए। गूगल सर्च इंजन पे टॉप 10 रैंकिंग में आइए तो SEO मार्केटिंग, जिससे आप अपनी मसनूआत या फिर अपनी ऑर्गेनाइजेशन या इसके साथ अपनी कंपनी को बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं सोशल मीडिया पर, तो अभी कांटेक्ट कीजिए बिजवेब सॉल्यूशन। कॉल कीजिए 0315-220-6269 पर।
1: The Magical Radio, www.themagicradio.com।

आपकी वेबसाइट को इंटरनेट पे प्रमोट कीजिए, गूगल सर्च इंजिन पे टॉप 10 रैंकिंग में आइए। तो SEO मार्केटिंग, जिससे आप अपनी मसनूआत या फिर अपनी ऑर्गेनाइजेशन या इसके साथ अपनी कंपनी को बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं सोशल मीडिया पर, तो अभी कांटेक्ट कीजिए BizWeb Solution। कॉल कीजिए 03152206269 पर।

0: मशहूर वेबसाइट को इंटरनेट पे प्रमोट कीजिए। गूगल सर्च इंजन पे टॉप 10 रैंकिंग में आइए। तो SEO मार्केटिंग, जिससे आप अपनी मसनूआत या फिर अपनी ऑर्गेनाइजेशन या इसके साथ अपनी कंपनी को बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं सोशल मीडिया पर, तो अभी कांटेक्ट कीजिए बिजवेब सॉल्यूशन। कॉल कीजिए 0315-220-6269 पर।
1: द मैजिकल रेडियो, www.themagicradio.com।

0: बिज वेब सॉल्यूशन पेश कर रहा है अपनी मनफरिद सर्विसेज, वेबसाइट डिजाइनिंग, ऑनलाइन मार्केटिंग, SEO सर्विसेज, ऑनलाइन स्ट्रीमिंग और एंड्रॉइड मोबाइल एप्लीकेशन। मजीद मालूमात के लिए विजिट कीजिए www.bizwebsolution.net या फिर हमें फेसबुक पर ज्वाइन कीजिए facebook.com/bizwebsolution।
1: Soundtastic, back to back, super hit on your station, themagicradio.com.
2: We have a best listener.
3: Radio to bada lagsha.

0: वेबसाइट बनवाएं, कारोबार बढ़ाएं, आपकी वेबसाइट आपके कारोबार की पहचान। इस वेब सॉल्यूशन अभी कॉल कीजिए 0315-220-6269 पर। I'm about to strip and I want a quick, can you
1: handle? Soundtastic! Back to back, super hit on your station, themagicradio.com.
2: We have a best listener.
3: Radio to bada alaish hai.

0: क्या आप अपनी वेबसाइट ऑनलाइन करवाने का सोच रहे हैं कि अपनी वेबसाइट लॉन्च की जाए, लेकिन किस तरह? नेटिस होस्ट दे रहा है आपको वेब होस्टिंग डोमेन सॉल्यूशन सिर्फ 1900 सालाना में। अभी कॉल कीजिए 0315-220-6269 पर या फिर विजिट कीजिए www.netishost.com। योर होस्टिंग पार्टनर नेटिस होस्ट।
1: Happy musical journey on themagicradio.com.

0: क्या आप अपनी वेबसाइट ऑनलाइन करवाने का सोच रहे हैं कि अपनी वेबसाइट लॉन्च की जाए, लेकिन किस तरह? नेटिसहोस्ट दे रहा है आपको वेब होस्टिंग डोमेन सॉल्यूशन सिर्फ 1900 सालाना में। अभी कॉल कीजिए 0315-220-6269 पर या फिर विजिट कीजिए www.netishost.com। योर होस्टिंग पार्टनर नेटिसहोस्ट।
1: Happy musical journey on themagicradio.com.

0: BizWeb Solution पेश कर रहा है अपनी मनफरिद सर्विसेज, वेबसाइट डिजाइनिंग, ऑनलाइन मार्केटिंग, SEO सर्विसेज, ऑनलाइन स्ट्रीमिंग और एंड्रॉइड मोबाइल एप्लीकेशन। मजीद मालूमात के लिए विजिट कीजिए www.bizwebsolution.net या फिर हमें फेसबुक पर ज्वाइन कीजिए facebook.com/bizwebsolution।
1: Soundtastic, back to back, super hit on your station, the magic radio.com.
2: We have a best listener.
3: Radio to bada lagsha.

0: बिज वेब सॉल्यूशन पेश कर रहा है अपनी मुनफरिद सर्विसेज, वेबसाइट डिजाइनिंग, ऑनलाइन मार्केटिंग, SEO सर्विसेज, ऑनलाइन स्ट्रीमिंग और एंड्रॉइड मोबाइल एप्लीकेशन। मजीद मालूमात के लिए विजिट कीजिए www.bizwebsolution.net या फिर हमें फेसबुक पर ज्वाइन कीजिए facebook.com/bizwebsolution।
1: द मैजिकल रेडियो www.themagicradio.com।

0: वेबसाइट बनवाएं, कारोबार बढ़ाएं, आपकी वेबसाइट आपके कारोबार की पहचान। इस वेब सॉल्यूशन अभी कॉल कीजिए 03152206269 पर।
1: द मैजिकल रेडियो www.themagicradio.com।

0: अपनी वेबसाइट को इंटरनेट पे प्रमोट कीजिए। गूगल सर्च इंजिन पे टॉप 10 रैंकिंग में आइए तो SEO मार्केटिंग, जिससे आप अपनी मसनूआत या फिर अपनी ऑर्गेनाइजेशन या इसके साथ अपनी कंपनी को बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं सोशल मीडिया पर, तो अभी कांटेक्ट कीजिए बिजवेब सॉल्यूशन। कॉल कीजिए 0315-220-6269 पर।
1: द मैजिकल रेडियो www.themagicradio.com।

वेबसाइट बनवाएं, कारोबार बढ़ाएं, आपकी वेबसाइट आपके कारोबार की पहचान। इस वेब सॉल्यूशन अभी कॉल कीजिए 031522062 69 पर।

0: बिज वेब सॉल्यूशन पेश कर रहा है अपनी मुनफरिद सर्विसेज, वेबसाइट डिजाइनिंग, ऑनलाइन मार्केटिंग, SEO सर्विसेज, ऑनलाइन स्ट्रीमिंग और एंड्रॉइड मोबाइल एप्लीकेशन। मज़ीद मालूमात के लिए विजिट कीजिए www.bizwebsolution.net या फिर हमें फेसबुक पर ज्वाइन कीजिए facebook.com/bizwebsolution।
1: हैप्पी म्यूजिकल जर्नी ऑन द मैजिक रेडियो .com।

0: बिज वेब सॉल्यूशन पेश कर रहा है अपनी मुनफरिद सर्विसेज, वेबसाइट डिजाइनिंग, ऑनलाइन मार्केटिंग, SEO सर्विसेज, ऑनलाइन स्ट्रीमिंग और एंड्रॉइड मोबाइल एप्लीकेशन। मजीद मालूमात के लिए विजिट कीजिए www.bizwebsolution.net या फिर हमें फेसबुक पर ज्वाइन कीजिए facebook.com/bizwebsolution।
1: The Magical Radio, www.themagicradio.com।

0: क्या आप अपनी वेबसाइट ऑनलाइन करवाने का सोच रहे हैं कि अपनी वेबसाइट लॉन्च की जाए, लेकिन किस तरह? नेटिस होस्ट दे रहा है आपको वेब होस्टिंग डोमेन सॉल्यूशन सिर्फ 1900 सालाना में। अभी कॉल कीजिए 0315-220-6269 पर या फिर विजिट कीजिए www.netishost.com। योर होस्टिंग पार्टनर नेटिस होस्ट।
1: The Magical Radio, www.themagicradio.com.